0: Soca Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris, and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel, Atal Protected.
5: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
0: Raj Badden drives Leicester home with Drive at 4 p.m. Oh,

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
4: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन बुद्ध मन्ने सगल पौन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव तगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

अनाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

जोर जोर ना जीवन मरण न जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवार।

0: This is Leica Radio.
1: Just to let you know, the last time I heard that song was the other day when my friend didn't win the lottery.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: लीजिए आप सबकी खिदमत में भी सलाम अपुन का। किशोरदा की आवाज में देश प्रेमी फिल्म से था ये गाना और ये धमाकेदार म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, जिसमें बिग बी के साथ थी ब्यूटीफुल हेमा मालिनी। और उससे पहले भी आपने ज्योति फिल्म का गीत सुना दादाजी की आवाज में, जिसमें जितेंद्र के साथ थी ब्यूटीफुल हेमा मालिनी। और आप सुन रहे हैं आप सबका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं भी हमारे साथ ही हमारा साथ दे रहे हैं सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खुश है, चुस्त है, तंदुरुस्त है और अपना जीवन बहुत ही खुशी के साथ जी रहे हैं। और आप हमारा साथ दे रहे हैं ये तो आपके मैसेजेस बता रहे हैं, तो बस साथ यूं ही देते रहिए। गीत संगीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा अब से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। और जो मुझे नहीं जानते हैं उन्हें बताती चलूं कि मेरा नाम है ऋतु शर्मा, 1 बजे तक मैं आपके साथ ही रहूंगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और अगला गीत सुनवाने से पहले आपको बता दें कि आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 127.6 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Durandar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Leela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box, 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils, 1.5kg for 3.99. Mido Yogurt 10kg, 8.99. Karela.

0: क्या खूबसूरत गाना है लता जी और कुमार शानू की आवाज में, जिसे म्यूजिक से सजाया है जतिन ललित ने। दिल वाले दुल्हनिया ले जाइए से लिया था ये गाना। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन। ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं। और ये समय है आप सभी के मैसेजेस पर एक नजर डालने को।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला गीत सुनवाने से पहले आज का विचार शेयर करते हैं, जिसे हमेशा की तरह विजय गुडूरी जी ने हमारे साथ शेयर किया है और आपने लिखी है बात पते की। कहते हैं, जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता, कभी समय रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं, लेकिन इन सब के बीच चलते जाना ही जीवन का नाम है। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने हमें याद दिलाया है कि आज कोई है जिनका जन्म हुआ था। जी हाँ, आज उन्हीं को हम याद करने वाले हैं अपनी आज की यादें में, और उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। कौन है जरा सोचिए, बताइए, वरना मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आपके मैसेजेस पर नजर डाल ली जाए। ये है नसीर अहमद भट्टी, लिस्बन पोर्चुगल में प्रोग्राम सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं, ऋतु शर्मा कैसी हैं, क्या हालचाल है? अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ नसीर जी, आगे भगवान जाने। अभी तो ठीक हूँ, आप सबके साथ हूँ। थैंक यू संध्या बाब सर, आपने क्या शानदार फोटोग्राफ्स भेजी हैं, आपसे मिलना हुआ था और आपने मेरे संग फोटो भी खिंचाई थी, बड़ी सुंदर है। थैंक यू। रोशनी, आपने सही गैस किया है, यस उनका नाम क्या है, बिल्कुल मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू। जासू जी, गुड मॉर्निंग। किरण जी, थैंक यू, स्वागत है आपका। ये है हमारे कौन साहब, अरे नाम लिखना भूल गए, मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा है, नंबर एंडिंग 883, अपना नाम जरूर लिखिए मैसेज के साथ साथ। मृदु जी, थैंक यू। अर्जुन जी, गुड मॉर्निंग। भारत जी, सपना एंड परेश व्यास जी, शेखर अनंत जी, दिव्या जी, आपका मैसेज का धन्यवाद। और आपने लिखा, हेलो ऋतु धर्मा कैसी हो। आपने मुझे करण जौहर का रिलेटिव बना दिया, लेकिन मैं खुश हूँ, काश मैं सच में ही होती। आई लाइक दिस नेम, थैंक यू साथ देने के लिए। अनिल सोनी जी वियाना में हमारा साथ दे रहे हैं, फरजाना एंड हमारे साथ है गिरीश जी भारत में, कहते हैं शनिवार की दोपहर तो मैंने आपके नाम कर दी है, क्या बात है, ऋतु खुश हुई ये सुनकर। थैंक यू। प्रज्ञा तोची जी, हमारे राजेश जी हमारे साथ है, कहते हैं अगस्त के नए महीने का पहला शनिवार है और उसकी आपको शुभकामनाएं, और आप चाहते हैं कि धूप से भरा हो और तापमान ज्यादा सहनीय हो। हाँ, मैं तो डर गई जब आपने कहा धूप से भरा हो, मतलब धूप तो हो लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो, तो मौसम का मजा बहुत ही अच्छा है। और आप हमारा साथ दे रहे हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो साथ देते रहिए, सुनते रहिए। मालती जी हमारे साथ हैं, हरीश खत्री जी, भारती जी, थैंक यू। और चलिए, अब इतने सारे साथियों के मैंने नाम ले ही लिए हैं, आप इतने प्यार से साथ दे ही रहे हैं, तो अगला गाना क्यों ना मैं आप सबको डेडिकेट कर दूं। चलिए फिर,
1: ये है लाइका रेडियो। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: यस 1981 की फिल्म लव स्टोरी से था ये गाना और सुरजीत जी आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू रोजी रजीना, थैंक यू मिस्टर मिसेस पेके चियांग, थैंक यू अलका जी. बिल्कुल यही हूँ और 10 बजे से पहले ही यहाँ हूँ. आप हमारा साथ दे रही हैं और आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है. मैं यही हूँ, मैं यहाँ मैं बिल्कुल यहाँ हूँ. और किस तरह से आपको यकीन दिलाऊँ अलका जी. सहर जी, फारूक मोहम्मद जी, थैंक यू साथ देने के लिए. विजय गुनवा जी, बेल्जियम से प्रीति जी, चंदू शाह और हमारे परेश व्यास जी कहते हैं कि तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी. यस, यही तो जीवन है, चलते रहने का नाम. आप हमारा साथ दे रहे हैं जानकर अच्छा लग रहा है. और स्वीटी कालरा जी और फरीदा गुलाम अली जी ने फट से पहचान लिया है कि अरे ट्रेजेडी क्वीन तो बॉलीवुड में बस एक ही है और उनका नाम है, सही कहा आपने, मीना कुमारी. आज मीना कुमारी जी की बर्थ एनिवर्सरी है तो आज की यादें में हम उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताएंगे और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाएंगे.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: ये है Laika Radio.
3: Across the Laika Radio network, this is Ritu Sharma.
0: जी हाँ बिल्कुल, हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए. दुबई के लिए बड़ी अच्छी डील्स चल रही हैं. हॉलीडे बुक कराइए, उन्हें फोन कीजिए 0208574840 पर और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Ritu Sharma.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
6: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
5: Click Rifko Theatre .com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
7: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
8: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.

0: आशा भोसले और शशि कपूर की आवाजें आपने अभी सुनी। थैंक यू मौसमा जी, आप हमारा साथ दे रही हैं। थैंक यू संध्या भाव सर, दिनेश पोपट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जैस जी एंड ऑफकोर्स हमारी आंटी जी नॉर्थ हॉल से प्रकाश सुथार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कुछ साथी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको लेकिन आज मीना कुमारी के साथ साथ नए जमाने की मीना कुमारी कह दूं या नहीं, तापसी बन्नू एक बड़ी ही अच्छी हीरोइन है और उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं। खास तौर पर उनकी बदला फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन थे और हसीन दिलरुबा, ओहो क्या खून खराबा मार काट वाली फिल्म थी लेकिन अच्छी थी। तो कुछ फिल्में जो बहुत अच्छी हैं, आज तापसी पन्नू भी अपना जन्मदिन मना रही हैं, आज ही के दिन वो पैदा हुई थी। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ ओल्डी गोल्डी की क्योंकि शो में बजते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लासिक्स। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में याद रखिए साथ देना है क्योंकि बात करूंगी मीना कुमारी की।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is £96.48 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Back-to-back hits across the Leica Radio Network. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colours TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye.
6: Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
11: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: से निराला। मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
3: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
4: The Ritu Sharma Show.
3: Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: मिलन का मैसेज आया और कहना है कि अभिमान का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। चलिए मिलन जी, ये गाना आपके नाम किया।
1: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.
0: और ये गाना लेकर चलेगा न्यूज तक।

0: लता जी के आवाज में दो खूबसूरत गाने आज आपने सुने, क्योंकि आज की यादें में हम याद कर रहे हैं अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत और जाने मानी अभिनेत्री मीना कुमारी को। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन 1 अगस्त 1933 में मीना कुमारी बॉर्न हुई थी और इन्हें हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक जाना जाता है, जिनकी बेहतरीन अधिकारी और भावुक किरदारों के कारण ही इन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन तो बाद में बनी, जन्म से ही इनके साथ ट्रेजेडी हो गई। जानते हैं, मीना कुमारी आज ही के दिन जन्मी थी 1 अगस्त 1933 में अली बख्श और इकबाल बेगम के घर। अली बख्श और इकबाल बेगम इनके माता पिता थे और जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो ये इनके पिताजी के लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी। वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए मीना कुमारी के जन्म के बाद, क्योंकि उनकी दो बेटियां पहले से ही थीं और वो बेटा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हो गई फिर से बेटी। बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए, घर परिवार में बहुत गरीबी थी और गरीबी का आलम यह था कि डॉक्टर को फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, और इसके चलते, अपने डिसअपॉइंटमेंट के चलते, अली बख्श ने मीना कुमारी को जन्म के बाद ही अनाथ आश्रम में छोड़ने का फैसला लिया और जाकर उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उनका मन बदला और उन्हें जाकर वापस घर लेकर आए। यानी कि ट्रेजेडी की शुरुआत जन्म के साथ ही मीना कुमारी के नाम से जुड़ गई। अब ये सोचिए, अगर उनके फादर उन्हें अनाथ आश्रम से वापस लेकर नहीं आते और मीना कुमारी फिल्मों में काम शुरू नहीं करती तो हमें इतनी बड़ी अदाकारा कैसे मिलती। लेकिन आपको बता दें कि मीना कुमारी के जन्म के बाद भी कुछ हालात परिवर्तित नहीं हुए। बहुत गरीबी थी और इसी के चलते जब वो सिर्फ 3-4 साल की थी उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। बेबी मीना के रूप में उन्होंने फिल्मों में काम किया और कहने वाले कहते हैं कि जब भी उन्हें काम के लिए भेजा जाता था वो बहुत रोया करती थी। वो कहती थी मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन उन्हें एक्टिंग के लिए भेजा जाता था क्योंकि उस समय वो ही एकमात्र घर की कमाई का एक साधन थी। कुछ और बातें मीना कुमारी की लाइफ से जुड़ी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत बजने का इंतजार कर रहा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long

0: ये थी आशा जी की आवाज, फिल्म का नाम काजल, जिसमें मीना कुमारी थी, साथ में थे राजकुमार। और आज हम मीना कुमारी को ही याद कर रहे हैं यादें में, क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: वैसे तो मीना कुमारी ने बहुत ही छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था आर्थिक तंगी के कारण, और उस जमाने में धार्मिक फिल्में बहुत बना करती थीं, तो शुरुआत में इन्हें उन्हीं फिल्मों में छोटे बच्चे के रूप में काम मिला करता था। इनकी फिल्म लाइन थी वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, और इस तरह की कई सारी फिल्मों में काम करते करते जब मीना कुमारी थोड़ी बड़ी हुई और लोगों को लगा कि यस इनकी एक्टिंग में सुधार हो रहा है, तब इन्हें एक फिल्म मिली बैजू बावरा भारत भूषण के साथ। और बैजू बावरा फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया, और उसके बाद से मीना कुमारी ने अपने आप को एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। और उसके बाद तो जैसे कि अच्छी फिल्मों की झड़ी लग गई। साहब बीवी और गुलाम एक और इनकी फिल्म आई जो इनके करियर की यादगार फिल्म है, और इस फिल्म का गीत सुनने की चाहत आप सभी दिखा रहे हैं, तो चलिए आपकी मांग पर ये गाना हो जाए।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: गीता दत्त की आवाज में ये गाना मीना कुमारी पर पिक्चराइज जैसे कि अमर है, और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके बहुत खूबसूरत गाने हैं जो मीना कुमारी पर पिक्चराइज किए गए हैं। आज मैंने कुछ गाने चूज किए हैं, लेकिन उनकी बात हो और पाकीज़ा की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। उसका गीत मैं ऑलरेडी आपको सुनवा चुकी हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल लगे, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब मीना कुमारी बहुत बीमार थी। फिल्म रिलीज होने के महज 2 महीने बाद उनका निधन हो गया था, और ये फिल्म उनके जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन आपको बता दें कि मीना कुमारी इस फिल्म में इतनी बीमार थी कि जो कुछ गाने हैं और कुछ आखिर के जो शॉट्स हैं ना, उसमें मीना कुमारी है ही नहीं। पद्मा खन्ना ने मीना कुमारी का गेटअप लेकर घूंघट डालकर उन सीन्स को और उन डांस सीक्वेंसेस को किया है। हमें तो अंतर पता नहीं चलता, लेकिन जो जानने वाले हैं वो बताते हैं कि पद्मा खन्ना ने मीना कुमारी का रोल किया है पाकीज़ा फिल्म में। एक और बहुत ही सुंदर सा गीत उनकी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म से, जिसमें उनके साथ थे दिलीप कुमार।
1: दिस इज रितु शर्मा। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर मीना कुमारी की एक बहुत ही यादगार फिल्म यहूदी से लिया था ये गाना। और आज हम यादें में मीना कुमारी को ही याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री थी बल्कि एक बहुत अच्छी कवित्री भी थी, या कहूँ शायरा भी थी। और अपनी शायरी नाज के नाम से लिखा करती थी और उनकी शायरी में उनका दर्द साफ दिखाई देता था। ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने भी एक बार कहा था कि मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जो बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी आंखों की खामोशी से पूरा किरदार बयां कर सकती हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ उन्हीं की फिल्म से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है ऑनर बेस्ड अब्यूज और इसे होस्ट किया है दीप राजा और खुश ने। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन पर, एप्पल पर एंड जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वहां जाकर। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज लाइका रेडियो।
1: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
4: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
3: Before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
4: Also explore 2026 cruises
3: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're atoll protected.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Start

0: यस, बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस फिल्म में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मीना कुमारी के साथ सुनील दत्त थे, यानी कि अपने जमाने के सारे सुपरस्टार्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया मीना कुमारी ने, और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है इसलिए आज हमने उन्हें याद किया है। हम सब जानते हैं कि कमाल अमरोही से उन्होंने प्यार भी किया, शादी भी की, लेकिन कहते हैं कि रिश्ता उनका कुछ अधूरा सा था। फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ उनका रिश्ता बेहद भावनात्मक था और उतार चढ़ाव से भरा था। दोनों ने शादी भी रचाई लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों अलग हो गए, और कहा जाता है कि उनके निजी जीवन के दुखों का असर उनकी सेहत और उनकी फिल्मों के चुनाव पर पड़ा। मीना कुमारी बीमार रहने लगी और पाकीज़ा फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन पहले ही इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर की फ़ीस चुका सकें, और जब इनकी मौत हुई तब भी यही हालत थे कि मीना कुमारी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज कर सके और डॉक्टर की फ़ीस चुका सके। एक प्रोड्यूसर ने इनके कुछ पुराने पैसे देने थे, जो पैसे इनकी मौत के बाद इनके अंतिम संस्कार के लिए काम आए, अंतिम संस्कार के वक्त काम आए। बहुत छोटी सी उम्र में, सिर्फ 38 की एज में मीना कुमारी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने 30 सालों तक फिल्मों में काम किया और एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स निभाए। मीना कुमारी के चाहने वाले तब भी बहुत थे, आज भी बहुत हैं। एक और खूबसूरत सा गीत आने वाला है इनकी फिल्म से, सुनवाती हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेकिन उससे पहले बता दें कि £1 आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is £96.4 per gram.
1: Ram Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
6: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
5: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

0: basmati rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपटेक।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.

0: Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.
1: लीजिए ये गाना होने वाला है आज की यादें का आखिरी गाना. थैंक यू सो मच, आपने आज मीना कुमारी की यादें पसंद की. मिलते हैं आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में.

0: लीजिए थोड़ी तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा। वैसे तो आजकल बहुत सारे खेतों में धुआं उठ रहा है, कई जगह आग लगी हुई है और मैं असल आग की बात कर रही हूँ। वैसे तो दिलों में बहुत लोगों की आग लगी हुई है, जो प्यार करने वाले होते हैं उनके दिलों में तो आग लगी ही रहती है, लेकिन मैं जंगलों की बात कर रही हूँ जो इस गर्मी के मौसम में धू धू करके जल रहे हैं। दोस्ताना फिल्म से था ये गाना आशा भोसले और किशोर दा की आवाजें, और उससे पहले कुमार सानू और अलका यानी की आवाज में खुददार फिल्म का गीत। और ये गाना हमारी तोशी जी को बहुत पसंद है कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तोशी जी आप बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है, कहती है ऋतु ये गाना अपने नाम कर लो। ओहो कितना प्यार, थैंक यू। मैं ये गाना आप सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ। लेकिन तोशी जी हमारी बहुत ही प्यार से सुनती हैं और बहुत आशीर्वाद देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड इसके अलावा हमारी जासू जी हैं, बहुत प्यारी लिसनर हैं, और जासू जी आपका मैसेज आया है, कहती हैं कि ऋतु आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है, वी ऑल वांट टू विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उनका नाम है रमा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जासू, नरेंद्र, रीतन, सूजी, फाल्गुनी एंड लिटिल जय। और आप सब की ओर से रमा को, ऑफ कोर्स मेरी ओर से भी रमा जी आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगला जो गाना है जो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत है, जिसमें यशुदास की आवाज है, चलिए आपको ही डेडिकेट करते हैं। लेकिन ये गाना बजेगा अब से बस थोड़ी ही देर में, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको बताना है आज के थ्री वर्ड्स गेम कौन से हैं। थ्री वर्ड्स गेम को शुरू करना है, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो बताती चलूँ कि मेरा नाम है ऋतु शर्मा, वीकेंड्स पर सैटरडे संडे 10 से 1 आपका साथ देने के लिए हाजिर हो जाती हूँ और 1 बजे तक यहीं रहने वाली हूँ। तो बहुत सारे साथी तैयार हैं थ्री वर्ड्स गेम खेलने के लिए। चलिए फिर, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि बॉलीवुड के किसी एक गाने के शुरू की जो 3-4 लाइनें होती हैं उनसे मैं 3 वर्ड्स पिक करती हूं और आपको गाना पहचानना होता है। और सच बता रही हूं आप सब पहचान भी लेते हो, बहुत कठिन है, मतलब मैं नहीं बता सकती हूं लेकिन आप सब बता देते हो, कमाल है। चलिए मैं ऐसे करती हूं, जल्दी से 3 वर्ड्स आपको बताती हूं और आप पहचानिए कौन सा गाना है। पहला वर्ड है जिगर, दूसरा वर्ड है खिदमत और तीसरा वर्ड है प्यार। पहला वर्ड है जिगर, दूसरा वर्ड है खिदमत और तीसरा वर्ड है प्यार। 1963 की फिल्म है, ओपी नैयर का म्यूजिक है और रफी साहब की आवाज है। जरा सोचिए और बताइए कि ये कौन सा गाना है। आई रिपीट, जिगर, खिदमत, प्यार। 1963 की फिल्म है, ओपी नैयर साहब का म्यूजिक है और मोहम्मद रफी की आवाज है। अगर आपको पता है कि ये गाना कौन सा है तो फटाफट अपना आंसर भिजवाइए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
0: I repeat once again, जिगर, खिदमत, प्यार। 1963 की फिल्म, ओपी नैयर का म्यूजिक और मोहम्मद रफी साहब की आवाज, कौन सा है ये गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 127.65 पाउंड्स पर ग्राम, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network.

0: $9.99. Hira Butter Ghee 2 kg $10.99. And Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry 82A, Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Hill, Leicester, LE54UN.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: नो नीड टू fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब।
6: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
6: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।

0: यशुदास की आवाज में चितचोर फिल्म से था ये गाना और क्या धुन बनाई थी रविंद्र जैन ने। शर्फून कहती है कि बहुत दिनों बाद ये गाना आज मैंने सुना है, तो यस बहुत दिनों बाद यहाँ से बजा भी है और आप सबने पसंद किया है और इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक यशुदास ही हैं और इसलिए इस गाने को बजाया। लेकिन अब समय आ गया है आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक के सिलसिले को शुरू करने का। लेकिन उससे पहले बता दूं कि थ्री वर्स गेम चल रहा है और बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल चुके हैं और कमाल की बात है कि किसी ने भी गलत जवाब आज नहीं दिया है। यानी कि जिन्होंने भी मुझे जवाब दिया है आप सबके आंसर सही सही है। यस सही है। गाना सुनवाऊंगी अब से बस थोड़ी देर में, लेकिन पहले शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको पहला गाना।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी की आवाज में क्या मीठा गाना था और क्या मीठी धुन बनाई है हेमंत कुमार ने, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है। लेकिन इस फिल्म में काम किया था विश्वजीत ने और साथ में थी वहीदा रहमान। और आपको बता दें कि एज ए लीड हीरो ये विश्वजीत की पहली फिल्म थी, और उसके बाद तो इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, और ये खबर माता पिता के लिए है एक महत्वपूर्ण सूचना। अपने बच्चे को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए सुनिश्चित करें कि उसके सभी बचपन के टीके यानी कि वैक्सीनेशंस समय पर लग चुके हों। टीके आपके बच्चे को खसरा और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदायों में आसानी से फैल सकती है। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर वर्ष 5,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं, और ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो भी आप अपने GP से संपर्क करके वो छूटा हुआ टीकाकरण पूरा करवा सकते हैं। क्या आपके बच्चे के सभी टीके समय पर लग चुके हैं? अपने बच्चे की रेड बुक देखें या अपने GP प्रैक्टिस से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर।
1: The Ritu Sharma Show on Leica Radio.
0: और अब सुनवाते हैं आपको आज की ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत, और इस बार लता जी के साथ आवाज मिलाई है मुकेश ने। मुकेश जी हमारे बहुत सारे साथियों के फेवरेट सिंगर हैं।
1: This is Ritu Sharma.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: दीजिए।
1: या छलिया फिल्म से था ये गाना जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और संतोष जी और हमारे दिनेश पोपट जी का कहना है कि ये तो 1960 से मेरा फेवरेट गाना है, मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरे लीजिए पर दिल हम ही को दीजिए, क्या प्यारी रिक्वेस्ट है प्यार के साथ। ब्यूटीफुल गाना जिसे आप सबने पसंद किया है। और अब समय आ गया है कि मैं बता दूं हमारे किन साथियों ने सही सही जवाब दे दिया है आज के थ्री वर्ड्स गेम का। तो जिन्होंने सही पहचाना है उनके नाम है उल्लास, दिनेश पोपट जी, विजय घुनोवा जी, फातिमा, दिनेश पोपट जी दोबारा आपका नाम लिख दिया, प्रीति बेल्जियम से, गिरीश जी भारत से, गीता हर्ष जोशी, नरेन पटेल, शरफून, कामिनी जी, नीलेश तन्ना, जगदीश जी बुशी से, जैनुद्दीन हाजरा जी, महेंद्र बजारिया, उल्लास, चंदू शाह, दिव्या जी हैरो से, शालिनी जी, कमल शिवनानी जी, सहर, विजय गुडोरी जी, अनिल मांधे, नीलकंठ जी, फरीद हुसैन जी, मोहम्मद अयूब चौहान जी, कुकी तोची, उषा घोड़ा जी, आप सभी ने सही जवाब दिया है। मैंने कहा ना आज किसी ने भी जवाब गलत दिया ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, लगता है ये गाना आप सबका बहुत फेवरेट है। तो जिसे बजाऊंगी आपसे बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन फॉर द समर शोकेस 2026 एट हैरो स्कूल। आप वहां जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कीजिए द रिचनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड कल्चर इन एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑन सैटरडे 8th अगस्त From 3 PM onwards. Tickets available हैं कहाँ पर? ticketsource.com/bhavan पर, या फिर आप उन्हें कॉल कीजिए on 07421497541. I repeat 07421497541.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रेवल को कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं दुबई के लिए, उन्हें कॉल कीजिए 02085748410 पर, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
1: और बस अब थोड़ी ही देर में सुनवाने वाली हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: Yeah. Leica Radio. Start to

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: हम बड़ी दूर चले आए हैं चलते चलते भाई, अभी तो चलना शुरू किया है। सरिता, ये सफर 3 घंटे का है और मेरे साथी भी मेरे साथ साथ चलेंगे दूर तक, यानी 7 बजे तक तो मेरा साथ जरूर निभाएंगे। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर वेल। हमेशा खुश और खैरियत से रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चीयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जिए और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और तिरकते हुए। गाने मेरी कोशिश रहती है कि चुन चुन कर लाऊं जो आपके मन को भा जाए, उन गीतों के साथ आप गुनगुना पाएं और उन गीतों के साथ आप गा पाएं और उन गीतों के साथ अपनी कुछ यादें ताज़ा कर पाएं। तो ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। पहले 2 गीत मैंने सोनू निगम की आवाज़ में इसलिए शामिल किए क्योंकि हमारे सोनू जी ने परसों यानी 30 जुलाई को अपना बर्थडे मनाया। एंड सोनू इज़ वेरी डियर टू मी, आई ऑलवेज कॉल हिम सोनू, आई नेवर कॉल हिम सोनू जी, बट ही इज़ सो लविंग। वेन एवर आई सेंड हिम अ मैसेज, ही ऑलवेज रिप्लाई, ऑलवेज विदाउट एनी फेलियर। मियामी में है आजकल, शो करने के लिए गए, वहाँ से भी मुझे मैसेज भेजा। एंड वो बहुत अच्छी एक फीलिंग है। मेरा और इनका रिश्ता जो है बहुत पुराना है, 90s early 90s से मैं इन्हें बड़े प्यार से जानती हूँ और वो भी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सोनू की लंबी उम्र के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और इफ इट वॉज योर बर्थडे एज वेल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से अपना बर्थडे मनाया होगा। और अगर आज आपका बर्थडे है तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, नेक तमन्नाएं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हजार बार आए। सोनू निगम के बारे में कौन नहीं जानता है, कितना कुछ बताएं। हाँ, सब कुछ मालूम है आपको कि बचपन से उन्हें गाने का शौक था। 4 साल की उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। अपने फादर के साथ स्टेज शो किया करते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाते थे। उन्होंने 32 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं और 6,000 से भी ज़्यादा गाने वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। एंड एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अभिनय भी किया था। एंड पहला गाना उनका कौन सा था आपको याद है? चलिए, जन थी फिल्म 1990 में, उसके लिए उन्होंने पहला जो गाना था वो गाया। एंड टीवी होस्ट भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, पद्मश्री से भी उन्हें सम्मान मिला है। तो हमारी तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, उनकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हज़ार बार आए। अब 6,000 गीतों में से अगर 2 गीत मैंने चुनने थे तो मैंने चुने वो गीत और ज़रा हट के थे। पहला गीत दंड नायक से चुना था मैंने, 1998 की फिल्म थी। एंड दूसरा गीत मैंने चुना फ्रॉम द फिल्म संघर्ष, और इस गीत में उनकी आवाज़ आपने सुनी और पहले गीत में साधना सरगम ने उनका साथ निभाया। अब क्योंकि इन्होंने ज़्यादा 90s में ही गाना शुरू किया तो 90s के ही गाने हैं, तो मैं और ज़्यादा गीत नहीं शामिल कर पाऊँगी। लेकिन इन दोनों गीतों में कुछ और भी कॉमन था। क्या कॉमन था, अगर आपको पता चल चुका है तो आप मुझे बता सकते हैं। नंबर आपका जाना पहचाना है, व्हाट्सएप के जरिए मेरे स्टूडियो तक आप पहुंच सकते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई, अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं आज तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू 127 rupees and 65 paisas। एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप पर है आपके, तो घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega Blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollots Hill, Leicester, LE54UN. Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation,
4: in Dubai.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total riz, hai na?
7: Well, she's talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
6: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
2: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the king of Sufi music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959 250376.
8: Yeh hai Leica Gold

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhai Rafi sahab ki awaaz ke bahut se diwane hain aur un sab ke naam kiya maine is geet ko aur Rafi sahab ko bhi yaad kiya aur kal ka din रफ़ी साहब का था और बहुत से गीत आपने सुने हमारे यहाँ से, तो मैंने चुने ये गीत और उम्मीद करती हूँ जितने भी गीत रफ़ी साहब के आप आज के इस प्रोग्राम में सुनेंगे वो हम सब उनको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। बहुत प्यारा गीत था, फिल्म अमानत से चुना था, 1977 की ये फिल्म थी। अगला गीत भी रफ़ी साहब ही की आवाज़ में है लेकिन साथ दे रही हैं कौन, लता जी की आवाज़। तो दोनों की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत आप तक पहुंचा रही हूं और ये गीत आप तक पहुंचाएंगे कौन, ये भी जान लीजिए।
0: Like a Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: भी मेरी बहुत से साथियों को पता चल चुका है कि आज के गीतों में कौन सा वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है. अगर आपको नहीं पता चला तो मैं बता दूं कि दूर रहने की बात हो रही है, कोई पास आना चाहता है, पर हम पास नहीं दूर की बात कर रहे हैं. सो आपको कोई ख़ास गाना याद आ रहा है और चाहते हैं कि प्रोग्राम में शामिल हो तो जल्दी से मुझे आप बता सकते हैं. और दो गीत हैं फिल्म गवाही के, उनमें दूर वर्ड नहीं आते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू प्ले उनमें से एक गाना ज़रूर आज के प्रोग्राम में प्ले होगा, क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी. हो सकता है नेक्स्ट आवर या हो सकता है उससे भी अगले आवर में हो. तो दो गीतों में से जो गीत आपको बहुत पसंद है उसके बारे में मुझे बता सकते हैं. गीत है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में गाया हुआ देख के तुझको, फिल्म गवाही का गीत. और दूसरा गीत था गवाही का बहुत प्यारा गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो गाना. तो वो गीत कौन सा है, कौन सा गाना है, अभी सरिता को ही नहीं याद आ रहा है कौन सा गीत था. दिल की बातें हैं, कह दो तो बताएंगे, ये मौसम ऐसे मौसम कब आएंगे. सो दोनों गीतों में आप पंकज उदास जी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, तो आपको कौन सा गीत ज़्यादा पसंद है जल्दी से बताइएगा, तो मैं उसी गीत को प्रोग्राम में जगह दूंगी. सो अब आगे बढ़ते हैं और अगले गीत में भी यही है वर्ड जो हर गीत में सुनने को मिल रहा है, और उम्मीद करती हूँ इस गीत को भी आप पसंद करेंगे सर.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइकारेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। लाइका रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लेस्टरशायर विद द यूकेस बिगेस्ट एशियन हिट्स। सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स।
1: जब ढल जाए सांझ की दुल्हन

व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुकेश जी की आवाज़ में सलील चौधरी जी का था संगीत। और प्रोग्राम का अगला गीत हमें पहुंचा देगा कहाँ, न्यूज़ तक। न्यूज़ के उस पार मैं सरिता हाफी के साथ हूँ, मेरा साथ देते रहिएगा। थैंक यू एवर सो मच फॉर योर लवली मैसेजेज़।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत था फ्रॉम द फिल्म बाहर आने तक, 1990 की फिल्म थी. अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास की आवाजें शामिल रही. मोहब्बत इनायत करम देखते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. बहुत दिनों बाद प्रोग्राम में शामिल किया तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पसंद भी जरूर किया होगा. और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म गवाही, जो 1989 में रिलीज हुई थी और वो भी आज ही के दिन. जी हाँ, ये फिल्म आज ही के दिन 1989 में रिलीज हुई थी. एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनंत बलानी ने एंड हेमेंद्र भाटिया ने इसकी स्टोरी लिखी थी. And it was based on the night of January 16th by Ayn Rand. ये writer poet writer का नाम है. And it was produced by Aditya Raj Kapoor. जीनत अमान, शेखर कपूर एंड रंजीता कौर के साथ साथ आशुतोष गवारकर की भी इसमें एंट्री थी, यानी कि उन्होंने काम किया. एंड फिल्म का संगीत दिया था उत्तम जगदीश ने और सरदार अंजुम ने इसके इन गीतों को लिखा था. दो गीत इस फिल्म के बहुत ज़बरदस्त थे और दोनों में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ, तो आपने मेरा काम आसान कर दिया. जिन मेरे साथियों ने इस गीत को वोट दिया था वो सब मुस्कुरा रहे होंगे. आई एम श्योर कि यू थरली इंजॉयड इट. विमल रायन जी, दिनेश पोपट जी, रोशनी जी, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, हरीश रुडा जी, हाना, विजय गुदरुई एंड प्रतिभा, अमिता जी, उमेश शाह जी, शौकत हुसैन, रानी इंसलाव तोची जी, भरत गंगाराम जी, अर्जुन जी, संतोष जी एंड उल्लास इन टोरंटो, फरजाना, भारती डीडी, भारती दो तरह की भारती जैया एंड मनु जी, इंतशाब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. मिसेस शेख आप भी सुन रहे हैं. विजय गनोवा जी इन बेटर सी, दिव्या इन हैरो, सलमा इन मेडस्टोन, सहर, फरीदा गुलाम अली जी, सुदेश टकिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह से प्रोग्राम में मेरा साथ देते रहिए. आइए बढ़ते हैं आगे और फिर कमर्शियल ब्रेक के उस पार हम मीना कुमारी जी को याद करेंगे.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आज आप पैसे भेजना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो डोंट फॉरगेट, यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आज आपके 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 127 रुपीज़ एंड 65 पैसा. एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Lela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE1 2JU and 2A Rollout Sale, Lister, LE5 4UN.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
6: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
5: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Job.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Beautiful gana. मीना कुमारी जी की फिल्म दिल एक मंदिर से चुना था. राजेंद्र कुमार एंड राजकुमार दोनों ही टॉप के हीरोज थे इस फिल्म में और टॉप की हीरोइन थी मीना कुमारी. बहुत खूबसूरत फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी जब भी मौका मिले ज़रूर देखिएगा. मीना कुमारी जी के बारे में हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जो मुझे है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो बड़े प्यार से इस वक्त सुन रहे हैं. 1933 में मुंबई की एक चौल में एक गरीब थिएटर कलाकार परिवार में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया. घर में इतनी तंगी थी कि पिता अली बख्श डॉक्टर की फीस तक नहीं चुका पाए जिन्होंने बेबी डिलीवर किया. इसके अलावा वो बेटे की उम्मीद भी लगाए बैठे थे. ये उनकी दूसरी बेटी थी. इस दोहरी मायूसी में उन्होंने क्या किया, बच्ची को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया और वहाँ से चले गए. हालांकि बेटी से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और फिर तुरंत अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े. पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही सी मीना के पूरे शरीर पर एंट्स काट रहे हैं. अनाथ आश्रम का दरवाज़ा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे. ये सब देखकर उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई और आंखों से आंसू बह निकले. झट से अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया और फिर अली बख्श अपने चंद दिनों की बेटी को घर ले आई. समय के साथ साथ शरीर के घाव भी ठीक होने लगे, किंतु मन में लगी बदकिस्मती के घाव ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा. आज मीना कुमारी जी की जयंती है. मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 में हुआ था. मुझसे ज़्यादा जानकारी वैसे आप रखते हैं. मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर इलाके की एक चौल में हुआ. पिता अली बख्श मूल रूप से पंजाब के भेड़ा इलाके से आए जो अब पाकिस्तान में है. वो मुंबई पहुँचे जो पारसी थिएटर में काम करने लगे. वहाँ के थिएटर से जुड़े हारमोनियम वादक, संगीत शिक्षक और उर्दू शायर थे. और उनकी माँ, कुछ सोर्सेज के मुताबिक माना जाता है कि उनका दूर का रिश्ता टैगोर खानदान से जुड़ा हुआ था. हालांकि इसकी पुख्ता जो है न पता नहीं है, पक्का नहीं मालूम. घर के माली हालत की वजह से महज अभी को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला. वो खुद चाहती थी कि पढ़ाई करे, मगर परिवार को उनकी कमाई की सख्त ज़रूरत थी और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया.

0: फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन जैसे ही मीना जी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो फिर इसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1963 में इनकी बहुत प्यारी प्यारी फिल्में आई थी, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी मैं इस 4 साल की उम्र में 1939 की फिल्म लेदरफेस से उन्होंने विजय भट्ट के निर्देशन में बतौर बाल कलाकार अपनी फिल्मों की शुरुआत की, सफ़र शुरू हुआ बेबी मीना के नाम से। 1947 में एक और गहरा सदमा लगा जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया, इकबाल बेगम था उनका नाम, और उन्हें लंग्स का कैंसर था। नए घर बांद्रा में शिफ्ट होने के महज 18 महीने बाद ही विजय भट्ट ने उन्हें फिल्म दी बैजू बावरा। इन 1952 में उन्हें मौका मिला जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलाया। ये अवार्ड की शुरुआत का ही साल था। इसके बाद के दशक में उन्होंने परिणीता, दो बीघा जमीन, साहिब बीबी और गुलाम, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्मों के लिए बहुत ही सीरियस रोल्स किए थे, संजीदा रोल किए थे, दर्द से भरी भूमिकाएं निभाई, इसीलिए तो कहलाए क्या। आप सभी जानते हैं उन्हें सभी क्या कहते थे, वो कहलाए ट्रेजेडी क्वीन। सो उन्हीं की फिल्म बैजू बावरा का ये गीत हो जाए, चलिए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं ये बता दूं,
1: Leica Extra Podcast Update.
0: Right, by this instance episode uncovers the harsh reality of honor-based abuse in our Desi communities. So Deep Raja will and Khush will be talking to the guest, and important conversation rooted in truth, courage, and the change that is needed. Extra, Leica Extra podcast. अगर अभी तक नहीं देखा है, तो it's available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Leica Extra.

0: भाई ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये विंटेज गोल्ड प्रोग्राम चल रहा है। आएंगे मेरे बाद आएंगे हमारे विंटेज गोल्ड के सैंडी शाह और आपका साथ निभाएंगे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। बहुत प्यारा गीत था बैजू बावरा से एंड आप सभी जानते हैं कि मीना कुमारी जी बहुत अच्छा लिखा भी करती थी, पोएट्री करती थी, शायरी करती थी। उन्हीं के चंद हैं अशआर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थर थराता हुआ धुआं तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई घर मिले भी कभी, हम सफर कोई घर मिले भी कभी, दोनों चलते रहें कहाँ तन्हा, जलती बुझती सी रोशनी के पर, जलती बुझती सी रोशनी के पर, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। क्या बात है, बहुत प्यारी पोएट्री मीना जी की लिखी हुई और उनकी बहुत सी किताबें भी छपी थी। एंड अब मैं आपको चॉइस दे रही हूँ दो गीतों की, जल्दी से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सा गीत होना चाहिए, प्ले करना चाहिए, दिल अपना और प्रीत पराई का टाइटल ट्रैक या फिर मेरा दिल अब तेरा ओ सजना। दिल अपना और प्रीत पराई टाइटल ट्रैक या फिर मेरा दिल अब तेरा ओ सजना, जल्दी से जवाब दे।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है Leica Radio।
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, Dumontford Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, dumontfordhall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
2: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
5: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
4: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
6: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Laika Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at laikaradio.com and the Laika Radio mobile app. The Laika Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: क्या बात है, ऐसे गीत एवरग्रीन है। और 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्होंने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी की तीनों जो फिल्में नॉमिनेट हुई थी, आरती, मैं चुप रहूंगी और साहेब बीबी और गुलाम, तीनों मीना कुमारी जी की फिल्में थी। और यह आखिरी फिल्म ही नहीं, उन्हें आखिरी फिल्म थी ये नहीं उन्हें अवार्ड दिला पाई, जिसमें उन्होंने शराब की लत से जूझती हुई अकेली एक बीवी का रोल निभाया था, यानी कि साहेब बीवी और गुलाम के लिए उन्हें अवार्ड मिला था। ये किरदार आगे चलकर उनकी जिंदगी का एक कैसे कहें कि एक हिस्सा ही बन गया। निजी जिंदगी में उन्होंने 14 फरवरी 1952 को निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शादी की, जो 19 साल उनसे बड़े थे। शुरुआत में रिश्ता प्यार भरा रहा, लेकिन बाद में बहुत कड़वाहट हो गई। फिर उन्होंने 1950 में पाकीज़ा की शुरुआत कर दी थी, लेकिन टेक्निकल ही चीज़ के कारण और दोनों के जो डिफरेंसेस हो गए थे उसकी वजह से फिल्म डिले हुई इतने साल तक। देन 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज हुई थी। पहले बॉक्स ऑफिस पर बहुत फीकी रही, लेकिन 28 मार्च 1972 को जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बिगड़ गई थी मीना कुमारी जी की, एंड 31 मार्च 1972 को वो इस जहां को छोड़कर चले गई, तो फिर फिल्म ने एक बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया था फिल्म का, और फिल्म बहुत ज़्यादा चली थी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you today Indian rupees 128.62, Pakistani rupees 373.71, Sri Lankan rupees 451.58, Bangladeshi taka 166.25 and US dollars 1.34.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold ka rate hai 96 pounds and 48 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colours TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Leicester Miller is back.
8: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
7: Confirmed artists include Lember Husseinpuri, H-Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
8: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
9: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
13: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. What's your travel mantra?

0: भी ये दो गीत जो मैंने शामिल किए, ये दोनों गीतों की फिल्में जो थी वो रिलीज हुई थी लास्ट वीक ऑफ जुलाई मंथ. सो साजन की बाहों में, अब 28 जुलाई को मेरा शो नहीं था तो मैंने सोचा था कि ये गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी. सो साजन की बाहों में फिल्म से लिया था पहला वाला गीत, डायरेक्टेड बाय जी प्रकाश, एंड इसमें काम किया था ऋषि कपूर ने, साथ में थी रवीना टंडन एंड तबू, और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने. उम्मीद करती हूँ आपको गीत पसंद आया जो मैंने शामिल किया कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाजों में. आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब समझते हैं, है ना, ऐसा ही होता है. जो भी आपकी ज़िंदगी में हैं उनके नाम करते हैं ये गीत ताकि वो भी खुश हो जाएंगे. और दूसरा गीत मैंने ऊंचे नीचे रास्ते, बहुत प्यारा गीत था, किशोर दा एंड लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत, मैंने खुद दार फिल्म से लिया था. और ये फिल्म भी लास्ट वीक ही, वेल एक्चुअली 30th of July 1982 को रिलीज़ हुई थी. रवि टंडन जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. फिल्म में मल्टी स्टार फिल्म थी. संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, प्रवीण बॉबी, तनुजा, बहुत सारे एक्टर्स थे इसमें. बिंदिया गोस्वामी भी थी, प्रेम चोपड़ा थे, महमूद थे, और इस फिल्म का संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने. ये दो गीत प्रोग्राम में इसलिए शामिल हुए. आपको पसंद आए तो ज़रा इशारा कर दीजिए, मुझे पता चल जाए. वैसे आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे सामने हैं, थैंक यू एवर सो मच. इतने प्यार से आप मुझे मैसेजेस लिख लिख कर भेज रहे हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 65 paisas. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN. Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you. South or travel at all protected.
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
8: Khakra Crunch Bhakri Man. चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
8: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
10: हैव यू नोटिस्ड द वे फैंस शाउट एट फुटबॉल मैचेस
11: ओह वेक अप
10: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
12: Four beers, please, garçon!
10: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: What a beautiful song, तेरी तस्वीर को सीने में दबा रखा है. सावन को आने दो, ये था फिल्म का नाम. और ये फिल्म 1979 की फिल्म है जिसमें काम किया था अरुण गोविल ने और साथ में थे अमरीश पुरी एंड जरीना वहाब, रीटा बहादुरी एज वेल, राज कमल जी का संगीत. और हमारे इस हफ्ते के आर्टिस्ट के जे यसुदास जी ने इस गीत में अपनी बहुत ही मीठी सी आवाज़ से इस गीत को भी अमर बना दिया. वैसे आपको बता दें कि इन्हें 8 times इनके इन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं उसमें 5 times एंड द स्टेट अवार्ड्स फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर 36 times. वाह वाह, और बहुत खूबसूरत गीत हैं इनके और उनमें से मैंने इस गीत को चुना. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, फिल्म का नाम था हवस एंड 1974 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। एक्चुअली आई वॉज़ गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग टुमारो, पर गलती से मिस्टेक हो गई ना, गलती से मिस्टेक हो गई और आज मैंने प्ले कर दिया। कल क्यों बजाना था मैंने ये गीत, क्योंकि कल ही के दिन ये 1974 में रिलीज़ हुई थी, तो आई थॉट आई विल प्ले इट टुमारो, बट आई वाज जस्ट चेकिंग कि गाना है हमारे पास और मैंने क्यों कर दिया। बट डजंट मैटर, कल भी सुनवा देंगे कुछ और फिल्म हवस से ही, और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुँच रहे हैं। शिखर जी थैंक यू, जय माता दी, आपका एक इवेंट है और इन्वाइट भेजा आपने, तो कल सरिता फिर प्रोग्राम कैसे करने आएगी। हाँ, और जगतार जी आप भी ज्वाइन कर चुके हैं, वैंकूवर में प्रोग्राम सुने, विजय गुजरोई, अमिता जी, शेखर जी, संध्या भाव सर, इंतशाब, महेंद्र बरजारिया जी एंड देशराज बसन जी। मुझे उम्मीद है कि आपने भी मीना कुमारी जी पर जो मैंने ट्रिब्यूट पेश की आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। एंड एक डेडिकेशन मुझ तक पहुंची थी मीना जी, शायद मीना जी ने मुझे लिखा था कि यस, मीना चौहान जी वेम्बले में प्रोग्राम सुन रही है, लिखती हैं कि कैन यू प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग फॉर माय डॉटर विराशी एंड सोनू, सन इन लॉ केवल, विराशी एंड केवल, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी 29th of July को, आपकी जोड़ी सलामत रहे, इसी तरह से प्यार बना रहे, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ रहे, मम्मी और पापा का, मीना और डैडी आपके इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, और सारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: So, आप समझ गए ना, फिल्म हवस का गीत आप तक पहुंचाया था डेरी वैली वालों ने, और अब जरा आगे बढ़ लो।
1: ये है लाइका रेडियो,
0: और लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मैं आपको बता दूं कि वी आर प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन फॉर द समर शोकेस 2026 एट हैरो स्कूल। एक्सपीरियंस द रिचनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड कल्चर इन एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑन सैटरडे 8th August एट 3 PM, from 3 PM onwards. So tickets available from ticketsource.com, ticketsource.com / Bhavan, or you can call 07421 497541. I'll repeat the tickets website, ticketsource.com/Bhavan, या फिर आप फोन कर सकते हैं 07421 497541।
3: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलिशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Lester Mela is back.
0: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
1: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
0: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
1: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
0: Arts Council England.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे ज्यां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: Punjab, the biggest tunes, non-stop.

0: track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: भाई ये गाना मैं लास्ट आवर में प्ले करना चाहती थी लेकिन वक्त की कमी के कारण नहीं कर पाए. मीना कुमारी जी की फिल्म से मैंने चुना था इस गीत को. उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पसंद किया.
2: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.67, Pakistani rupees 373.71, Sri Lankan rupee 451.57 and Bangladeshi taka 166.25.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LEICA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
1: It's £96.48 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: LEICA Radio.
4: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
1: जी हाँ, वैसे आज सैंडी नहीं आ रहे, आज उनकी जगह सुप्रतिम आपका मनोरंजन करेंगे, आपके लिए विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं. जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म से चुना है मैंने इस गीत को. और इसकी भी यही वजह है कि ये फिल्म भी आज ही के दिन 1960 में रिलीज हुई थी. राज कपूर एंड पद्मिनी ने इस फिल्म में काम किया था. राधा कमरकर ने इसे डायरेक्ट किया. शंकर जयकिशन का संगीत. इसी के साथ छोड़े जा रही हूँ मैं और मेरे जाने का वक्त हो गया. यस, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय, हैव अ लवली इवनिंग.

0: Dates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Desi Vibe Show with Sonia. Like a radio.
1: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
2: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-028-0655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203 963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 0208-574-8410। Travel at all protected. Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
2: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is the Desi Vibe Show with Sonia.

0: listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड मेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.

0: Breaker Radio. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colours TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV.
1: Khatron Ke Khiladi.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Leicester Miller is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
6: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
7: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
8: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard!
9: Okay, help's on its way.
10: Grab my hand!
11: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
12: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
13: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel Auto Protected.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. Mantra Holidays. What's your travel mantra?